0: सुबह ले फिर चो वो तो फिर चो दिन चार मां जो मुसो वेलो उसके ला स्ट्रेच इन जो वो है चो अब वो ला वो है चो के ला वो है चो वो प्रेंड अब वो है चो फास्ट नो मंगा में मेंस अब वो है चो उन जालू जक सिस लो चो वो प्रेंड अब फास्ट है चो चंबा मिने ना
1: टैंक चंबा मिने सब अंगाकुले ना इंडा राइट अस्पताल उत्तुबाने मियो कोरंगले
2: लो प्रेंड अब फास्ट
1: Thank you, right? 0604 0794 0604 0781 64. Right, so was this a good thing? Ubani, ma voice not a conage, Guaragum Sagazo, Pampidis Dom Zat FM.
3: Give me moya, your cold to Tuloba and to lay. Indian, give me moya,
1: Right, imimoya, right, kulungile, ingoma kanathi leyo mangicabanga. Right, asibuye ke singene ngala.
4: Hayi mjwarajwara, mina ngithi fethi, hayi uBrenda fethi, uthi ngizonda ama-janks fethi. Umkhize lo, emthinta nyoni baba. Ungingela inkuku nesibindi ngokulenga emqaleni. Sikelithi nohintshi, sinene nohintshele.
1: Danki siyabonga, ke asibona uthubani ngikhona ngala. Sami sabona?
5: uBrenda.
1: Mfowethu khamba kahle.
5: Uphuzumile uBrenda.
1: Mfowethu siyabonga kakhulu ne.
5: So.
1: Thank you, right? 10 minutes before kushaye ke u7. Yeah. Hayi ngicela ukuthi namhlanje abantu abaningi ke impela abashaya isikhonkosini akekho ke oyishaya iceleni. Eh? Hayi bakhona abashaya iceleni. Abanye kodwa abashilo ukuthi ke uBrenda fast. Well namhlanje ke ku music quiz ingoma kade siphethe Brenda Force vula indlela ngazi ukuthi kubunga kanani ubukuphi busa se high school noma ubusu se primary noma ubukunjani kodwa